मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और 7104 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अक्टूबर महीने की 10 तारीख व दिन है शनिवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आम श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री थुतन टाशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री टानिंग टाको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और श्री अश्युत बर्मन, मुनपा में उत्कोषक श्री लुफसांग नरबू तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उत्कोषिका येशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
0: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
4: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पर आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि

0: विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
1: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
3: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
4: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
0: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया।

0: में और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
1: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
0: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्यौहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोताओं, भी आप सुनी थी आकाशवाणी के दीदी केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम में आप सुने गायक हरिहरन, सुरेश वटकर, कविता कृष्णमूर्ति, नितिन मुकेश और अन्य गायकों के गाए चंद देवभक्ति गीत।

श्रोता, इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना अभी पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है, समय दोपहर के 3 बज गए हैं। लीजिए श्रोता, पेश है विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए अरुण जमतय, जसवा हालिम, प्रियंका संग अन्य गायकों के गए चंद आधुनिक कोकपरक गीत।

0: श्रोता, इसी गीत के साथ ही विभिन्न भिन्न का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत अभी पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगटिंग के छात्र सुखशी पेमलहामू से एक वार्ता। वार्ता का विषय है तवांग का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में।
1: ताशी डले आकाशवाणी तवांग के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पेमलहामू है। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगटिंग में 11वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं कार्यक्रम मेरी बात के तहत कुछ बात साझा करना चाहती हूँ और मेरा विषय है तवांग का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में। विद्यार्थी किसी भी देश और समाज का भविष्य होता है। आज हम जो सीखते हैं और जैसे व्यवहार करते हैं वही हमारे कल को बनाते हैं। इसीलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि तवांग का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में है। तवांग अपनी सुंदर प्रकृति, वादियों, समृद्ध संस्कृति और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी सुंदरता और पहचान को हमेशा बनाए रखें। एक सच्चा विद्यार्थी केवल पढ़ाई में ही अच्छा नहीं होता, बल्कि वह अनुशासन का पालन करता है, अपने शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करता है, अपने विद्यालय और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखता है और दूसरों की सहायता भी करता है। हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव लाते हैं। हमें अपनी मनपा संस्कृति, भाषा

0: परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने त्योहारों, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को समझना और आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी पहचान को बनाए रख सके। आज का विद्यार्थी ही कल का शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, सैनिक, किसान या समाज सेवक बनेगा। यदि हम आज ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो तवंग का भविष्य भी उज्जवल होगा। चलिए हम सभी यह संकल्प लें कि हम अच्छे विद्यार्थी, अच्छे नागरिक और अपने तवंग के सच्चे जिम्मेदार बनेंगे। अपने ज्ञान, अपने संस्कार और अपने अच्छे कार्यों से हम अपने तवंग को और भी सुंदर, स्वच्छ और प्रगतिशील बनाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोता, अभी आपने कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगटिंग के छात्र सुक्षी पेमाला मुझसे एक वार्ता सुना। वार्ता का विषय था तवांग का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं। बिल्लू फिल्म से सोहम चक्रवर्ती, अकृति कक्कर और मोनाली ठाकुर के आवाजों में। इस गीत की रचयिता है गुलजार और संगीत दिया है प्रीतम ने।

सोनन किरकिरे की गीत पर चेतावनी अपने फिल्म सिंगम से श्रेया घोषाल की आवाज में गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, नेहा बसीन की आवाज में फिल्म मेरी ब्रदर की दुल्हन से। इस गीत को बोल दिया है इशाद कामिल ने और संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मैनापुर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अभी पर समाप्त हुआ।
1: मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से। क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से वेव्स OTT ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माई वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें, अपना ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें, एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। जेम्स ऑफ इंडिया, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।
2: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
3: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
2: RBI कहता है जानकार बनिए,
3: सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो गए हैं। निजी श्रोता पेशे आधुनिक हिंदी फिल्म गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं। फिल्म सूर्यवंशी से अरिजीत सिंह और नीति मोहन के आवाजों में इस गीत को बोल दिया है रश्मि विराग ने और संगीत दिया है जैम एड ने।

तनिष्क बख्शी के संगीत पर कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म केसरी से अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाजों में।

अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया की स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स OTT पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।

तेरे नाल लव हो गए फिल्म से श्रोता भी अपने अदीब असलम, मोनाली ठाकुर और प्रिया पंचल की आवाजों में एक गीत का आनंद लिया। आइए कार्यक्रम में अगले गीत अब सुनते हैं। प्रीतम के संगीत पर फिल्म ये जवानी है दीवानी से अरिजीत सिंह और संजीव चौहान की आवाजों में।

श्रोता, अभी आपने फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में एक गीत सुना। इस गीत के रचयिता थे इरशाद कामिल और संगीत दिया था विशाल और शेखर ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रेडी से के और तुलसी कुमार के आवाजों में। गीतकार है निलेश मिश्रा और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।

श्रोता, मैं अपने विशाल शेखर के संगीत पर फिल्म बचना है हसीनों से के और शिल्पा राव की आवाजों में गीत सुना। आइए सुनते कार्यक्रम का अगले गीत, फिल्म लगे रहो मुन्नावाइज से श्रेया घोषाल और सोनू निगम के आवाजों में। इस गीत को रचा है जोनन किरकिरे ने और संगीत दिया है शांतनु मोहित्रा ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग में आज आप सुनिए उस्ताद इमरत खान से सितार वादन, राग है मधुवंती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत उस्ताद इमरत खान से सितार वादन राग था मधुवंती। ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के निसंप्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

यह आकाशवाणी है। अभी आप मीनाक्षी मजुमदार से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। दिल्ली पुलिस ने CJP के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं और कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोस और उससे परे के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभावों पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीति दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि स्थापित वैश्विक व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ देश को विश्व से अलग थलग करना नहीं है, बल्कि इससे महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास, निर्माण, रखरखाव और उड्डयन के लिए घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना शामिल है। भारतीय रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।

रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशन से ही रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने कहा कि यह फैसला रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में भारी सड़क जाम की आशंका के को देखते हुए लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि CJP को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए अवशासनों का पालन नहीं किया। सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन नहीं करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 4th समिति में विनिवेशकरण पर चर्चा के दौरान यह बात कही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां देश के अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है और विदेशी ताकतों के इशारों पर काम कर रही है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री नवीन ने विपक्षी पार्टियों पर देश में बेहद खतरनाक और गंभीर स्थिति पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने विपक्ष पर संविधान के नाम पर झूठ फैलाकर जनता के जनादेश का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बार बार चुनावी हार के कारण विपक्षी पार्टियों में निराशा पैदा हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार देश में तनाव पैदा करने की कोशिशों से सख्ती से निपटेगा। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने पुष्टि की है कि संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां एंकरेज में कल हुए ड्रोन हमले के बाद पनामा के झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर पर सवार सभी 22 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और भारतीय क्रू की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी जहाज प्रबंध कंपनी के संपर्क में हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सन्मुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉक के साथ बैठकें की। इन बैठकों में आपसी सहयोग को मजबूत करने, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेश के मौके पर चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय के अनुसार श्रीमती सीतारमण ने कल सिंगापुर में 10 स्थानों में राष्ट्रपति थर्मन से मुलाकात की। बैठक में भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी वित्त मंत्री सीतारमण का स्वागत किया और कहा कि बातचीत के वैश्विक आर्थिक हालात और मौजूदा ऊर्जा संकट से निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि श्रीमती सीतारमण ने भारत के विकास और निवेश व सहयोग के नए मौके के बारे में जानकारी साझा की। अपर सियांग जिले के गेकू के 4 निवासियों को प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना के लिए प्री फेसिबिलिटी रिपोर्ट स्टडीज का विरोध करने के कारण अरुणाचल प्रदेश गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 2014 के तहत हिरासत में ले लिया गया है। खबरों के अनुसार अदुम तायोम, ओमोक पोरोन, अकूत पालो

0: और ओसनपुरन को पासीघाट से हिरासत में ले लिया गया है। नौगांव लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने AIUDF प्रमुख बी अजमल को 1,42,224 वोटों से हराया, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार शिवामनी बोड़ा तीसरे स्थान पर रही। वोटिंग 6 अक्टूबर को हुई थी और वोटों की गिनती शुक्रवार को की गई। अब असम की 14 संसदीय सीटों में से बीजेपी के पास 10 लोकसभा सांसद हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने शुक्रवार को ईटानगर के स्टेट बैंक्वेट हॉल में एक भव्य समारोह के साथ 72वें राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों का समापन किया। पासीघाट वन विभाग को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला वन विभाग चुना गया और उसे वार्षिक प्रदर्शन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री की कामना की दुर्गा माँ आशीर्वाद समाज में सुख करुणा और नई उम्मीद लेकर उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की कामना की है। मुख्य समाचार फिर एक बार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। दिल्ली पुलिस ने CJP के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का भी आरोप लगाया। भारत ने इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani, the news read by Morgan Bagra. Delhi police has made an extensive security arrangements in the New Delhi area to ensure public safety in view of the call of protest at Jantar Mantar by CJP today. Police personnel are deployed at multiple checkpoints in New Delhi district. Talking to the media, Deputy Commissioner of Delhi Police Kumar Abhishek said that extensive arrangements have been made to ensure public order is not disrupted in the area. He said that preventive checks have been implemented in the New Delhi area. The DCP also informed that some individuals have been detained who were planning to participate in today's protest. Meanwhile, Deputy Commissioner of Delhi Traffic Police Vikas Kumar said that they are facilitating commuters to take alternative routes as traffic is regulated in the New Delhi area. Indian Railways has cancelled several trains arriving at New Delhi Tilak Bridge and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. today. According to the railways, all mail and express trains departing from their originating stations after 2 p.m. yesterday and scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin stations between 4 a.m. and 2 p.m. today have been cancelled at source. It said that the decision has been taken in view of the anticipated heavy road traffic congestion in areas surrounding the railway stations. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today alleged that opposition is weakening constitutional institutions and breaking people's faith in democracy. The union minister claimed that all this is being done with the support of foreign powers. Addressing a press conference in Bhopal, he criticized the India bloc and took a dig at the Cockroach Janata Party without naming it. Mr. Chauhan said that on one side the people are standing with Prime Minister Narendra Modi to build a Viksit Bharat, while on the other side the opposition is disappointed and frustrated. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman held meetings with Singapore President Tharman Sangamugaratnam and Prime Minister Lawrence Wong to discuss strengthening bilateral cooperation, global economic developments and investment opportunities. According to the Ministry of Finance, Ms. Sitharaman called on President Tharman at the Istana in Singapore yesterday. The meeting focused on advancing the comprehensive strategic partnership between India and Singapore and further strengthening bilateral ties. Singapore Prime Minister also welcomed the finance

0: सभी सुनने वालों का कृषि जगत कार्यक्रम में बेहद स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है जो मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उनके लिए अत्यधिक जरूरी जानकारी। तो हमारे साथ इसके बारे में बात करने के लिए आए हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से रिसर्च ऑफिसर तेची तोरा जी। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका बेहद स्वागत आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्ते, हेलो।
0: तो अब मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करके ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को हनी बी फार्मिंग, जो मधुमक्खी पालन है, उसके बारे में बताएं कि वो क्या है और उसके जो फायदे हैं उसके बारे में कुछ बताइए।
1: बी फार्मिंग या बी कीपिंग या एपिकल्चर, ये बहुत ही एंशिएंट फार्मिंग सिस्टम है। हालांकि हमारे स्टेट में कम जानकारी का वजह से उसका फार्मिंग पॉपुलर नहीं है।
0: अच्छा।
1: इसके फायदे जो है बहुत है। एक तो डायरेक्टली बी एंड बी प्रोडक्ट्स तो मिलते हैं, उसके साथ साथ ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में मल्टीपल ये मिलता है, इनहेंस।
0: अच्छा।
1: इंक्रीज मिलता है इसके लिए। तो दूसरे जो है उसके जो
0: लाभ है,
1: हाँ, उसके जो लाभ है वो एक तो डायरेक्ट हनी टू मिलता है। हनी को एक न्यूट्रिशियस फूड, एंशियंट फूड का हिसाब से देखा, हनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज करता है, कॉस्मेटिक पर्पज, जेली फिस्टिक, जेली, बॉडी लोशंस, ये में नेचुरल, देन थेरापेटिक पर्पज में उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके इवन वेनम्स उसको ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एक टू हनी को जो कन्फेक्शनरी फूड्स में, फूड्स के बीच में प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे, स्वीटनिंग एजेंट्स के तौर पे उसको यूज करता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल, हम लोग एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये देखते हैं कि पोलिनाइजेशन हो, जिसके मेजर करना भी मुश्किल है, उसके बहुत ही फायदा है, बहुत ही मल्टीपल ये प्रॉफिट है उसका।
0: अच्छा।
1: इसके लिए हम लोग ये एपिकल्चर को बढ़ावा देते हैं डिपार्टमेंट में।
0: अच्छा, तो अब आगे जानते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि बी के भी, जो मधुमक्खी के भी कई प्रकार होते हैं, कई तरह होते हैं, तो उसके बारे में बताइए अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में कि कौन कौन सा सही रहता है, उपयुक्त रहता है यहाँ पे पालन करने के लिए।
1: हाँ जी, हमें कम जानकारी है, हमारे लोग उसका टेक्नोलॉजी नो हाउ पता नहीं है। एल्स हमारे स्टेट में 4-5 जो बीस है, जो होनी बी बियरिंग बीस है वो कॉमन है, वो नेटिव बीस है। जैसे एक
0: जो यही
1: यस यही के है, जो जंगल, हमारे जंगल में नेचर में उपलब्ध वो एवरनेंट पाया जाता है। हालांकि ये डेवलपमेंट का वजह से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का वजह से, सिविलाइजेशन का होने का वजह से उसका पॉपुलेशन घट तो रहा है, किंतु है टू आज के डेट में भी। एक तो सबसे बड़ा कॉमन वाला है जो एपिस डोरसाटा, रॉक भी बोलते हैं, जंगल बड़ा पेड़ और पत्थर का चट्टान में मिलता है उसको, उसका आज तक साइंटिफिक रियरिंग हम लोग को ये नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं मिला, वो वाइल्ड में ही रहते हैं।
0: अच्छा, काफी ऑर्गेनिक भी होता है।
1: यस, ऑर्गेनिक है और मैक्सिमम 60-70% जो होनी प्रोडक्शन है आज के डेट में भी

0: से हम लोग को मिलता है
1: अरुणाचल में।
0: यस, अरुणाचल कंटेक्स में
1: जी।
0: ये इसका दूसरे रीजन है कि हमारे स्टेट में मेन लैंड रेशियो के हिसाब से और फॉरेस्ट कवर जो है हाइएस्ट इन इंडिया, हाइएस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, इस प्रकार से बोलिए। नेचुरल फॉरेस्ट कवर से, नेचुरल फ्लोरा एंड फौना से वो उसका पुट्स मिल जाता है। तो इसका एक नेचुरल हैबिटेट आप बोलिए, नेचुरल हैबिटेट सेंटर, नेस्लिंग सेंटर देखा गया है, वो बहुत कॉमन ये पाए जाते हैं। ये एक हुआ। दूसरा जो है एपिसिराना, जिसको इंडियन भी बोलता है।

0: अच्छा,
1: मिट्टी में पेड़ पेड़ का क्रिविक्स में बीच में घुस करके बैठा है, ये भी बहुत ही कमन है।
0: घरों पे जो दिखा जाता है
1: जो कमन हम लोग, और उसी को हम लोग मैक्सिमम यहाँ कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये हम सिर्फ नहीं, नागालैंड वाले, नेवर स्टेट जो असम वाले, इसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। दूसरे जो है एपिस ट्राइगोना, जिसको स्टिंगलेस भी बोलता है, काला करके चौथा सा मक्खी। हालांकि इसको पाला जाता है, बट साइंटिफिक सिस्टम हमारे पास आज तक नहीं है। हम लोग ने नेशनल बी बोर्ड को भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करें, वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वर्षों में हम उसको जल्दी ही उसको अटेंड कर लेंगे। दूसरे जो है एपिस फ्लोरिया भी है, ये छोटा ही लिटिल भी होता है, छोटा सा एक ये हिप्स में होता है, वो किसी गद्दा बक्सा का अंदर में नहीं घुसता है, वो पैर में लटक करके उसका है, वो ये भी होनी वियरिंग है। दूसरा जो है मेलिपोना इरिडिपेनिसिस, जो डेमर भी जिसको बोलते हैं, ये भी कॉमन है। उसको हम लोग कमर्शियली जिसको इसको ये हम लोग आज तक टेम कर नहीं पाया, बट दिस लिटिल बीस और ये डेमर बीस का मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही हाई, 2-3 times ऑफ द नॉर्मल बीस का इंटरनेशनल मार्केट में उसको देखा गया है। दूसरे जो है मेलिपेरा, इसको यूरोपियन भी बोलता है, इटालियन भी बोलता है, जापानीज भी बोलता है, ये हमारे नहीं है।
0: अच्छा।
1: ये हम लोग मिशन के दौरान उसको इंट्रोड्यूस किया गया, 3 districts में हम लोग किए थे, ये ईस्ट सियांग, पापुमपारे एंड चांगलांग। आज के डेट में चांगलांग के बोर्डुमसा आसपास एरिया में बहुत अच्छा प्रॉस्पर हो रहा है उसके। ये है तो जो डोमेस्टिकली हम लोग ये एपिस सिराना, एपिस ट्राइगोना, इसको ही हम लोग अभी पाल रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, जो मधुमक्खी की जाति होती है, रानी होती है, उन सब के बारे में एक बात बताइए।
1: हाँ, ये अंदर के एक बी हाइव्स कॉलोनी, अंदर के अपने सोसाइटी का सेटअप है
0: जी।
1: हर एक कॉलोनी में एक क्वीन होता है, वो क्वीन ही उसका सेंटर पॉइंट है, वही उसको होल्ड करके रखता है, जैसा रानी राजा होता है, वही हेड ऑफ द कॉलोनीज, उस समूह का वही हेड होता है। तो उसके रानी का काम है कि उसमें अंडा देना, वो हाइव से बाहर जाता नहीं।
0: अच्छा।
1: वो उसके पास स्पेसिफिक पेरामंस है बॉडी का, तो उस पेरामंस को लेकर के सारे कॉलोनीज जो है उसमें अटैच करके होल्ड करके अट्रैक्ट करके बैठ जाता है। एक दूसरी जो है वर्कर्स, उसी वर्कर्स को एक्चुअली नर्स भी बोलते हैं, नर्स भी या वर्कर्स भी।
0: अच्छा।
1: उसके काम करने और उनके काम करने का भी अजीब तरीके से और स्पेशली डिजाइन और स्पेशल प्लान करके उन लोग काम करता है। इतने एज के लोग ये करेंगे, इतने एज के लोग ये करेंगे, कोई गार्ड करता है, कोई सर्वे करने जाता है, कोई अंधों को या कोई बच्चे को जो खाना पिलाने वाला आते है, कोई शहद को वो पंखा दे करके परमेंटेशन देने वाला होता है, कोई रानी के साथ रहने वाला होता है, कोई हाइव्स घर बनाने के लिए बिजी होता है, वो उसी वर्कर्स में से वो पार्ट है। दूसरा जो है ये एक स्टेराइल मेल होता है ड्रोन, और ड्रोन का काम कुछ नहीं, वो है टू मेल, वो उनमें से कोई एक ही रानी को रानी लाइफ टाइम में एक बार ही मेटिंग होगा।
0: अच्छा।
1: तो बाकी जो है वो पालतू में खा पी करके बैठने वाला लोग है, नुकसान करके बैठते हैं। ये बी कास्ट बोलता है उसके अंदर, वो कॉलोनी में इतने लोग पाए जाते हैं, बेसिकली क्वीन एक ही होगा, वो वर्कर्स एंड नर्स हजारों में होगा, और ये ड्रोन 200-300 उस लेवल में होगा।
0: अच्छा अच्छा, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो मधुमक्खी पालन जो शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में बात करें, तो अब हम जानना चाहेंगे कि जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो जिस तरह का वातावरण होना चाहिए मधुमक्खी पालन के लिए, उसके बारे में बताएं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है।
1: हाँ, ये कमर्शियल और प्रॉफिटेबल बी फार्मिंग जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस ऑफ बींग साइंटिफिक एंड जो नेचुरली जो मिलता है। तो नेचुरली हमारे पूर्वजों ने जो हमारे बस्ती लोग जो अनज्ञानी लोग क्या करते हैं, बालू बंदर जैसा हम लोग पूरा हाइव्स को निकाल के चेर चार करके पूरा क्रॉस करके खा पी देते हैं उसको, वो खत्म कर देते हैं
0: एक ही बार।
1: यस, एक ही बार। नाउ जो साइंटिफिक सिस्टम में ऐसी डिजाइन इक्विपमेंट्स आज के डेट में मिलता है कॉलोनीज, आपने उसको डाल के रखा हाइव को, आर्टिफिशियल कॉम्ब भी मिलते हैं, उसको डाल के रखा है, आपको आपके मक्खी को मधुमक्खी को कुछ नहीं करना पड़ता है, उसमें सिर्फ शहद ही भराना होता है। तो उसका स्पेशल डिजाइन वाला ये बी बॉक्स आज के डेट में मार्केट में

0: अवेलेबल है, वो भी आप बी स्पेसिस लेकर के, सिराना का दूसरा हम लोग ए आई एस आई ए टाइप को ये प्रिस्क्राइब करते हैं।
1: अच्छा।
0: जो इटालियन बी है उसके लिए हम लोग लॉन्ग स्टॉक एच टाइप वाला को प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसके साथ साथ बी हाइव्स के साथ में जो एफेंडेज आता है साथ में एक्सट्रैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्टर्स, उसका स्पेसिफिकेशन दूसरा है।
1: अच्छा।
0: और जो एपिस ट्राइगोना हुआ उसका साइंटिफिक बॉक्सेस हम लोग के पास आज तक भी वो नहीं है। नाउ बी पालन आपको शुरू करने के लिए आप ये देखिए आपकी वातावरण जो है स्वच्छता हो, पोल्यूशन
1: अच्छा।
0: नहीं होना है, स्मोक्स वगैरह नहीं होना है, वाइब्रेशन नहीं होना है उसमें, आदमी आने जाने का इतना फ्रिक्वेंस नहीं होना चाहिए, कभी कभार ही उसमें जाए। दूसरे जो है उसके सराउंडिंग में आसपास में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हो जो पुल देता हो, तो उससे वो खाने पीने वाला रस बनाने वाला जो शहद बनाने वाला उसी से उन लोग निकल लेते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: ये है उतना का ध्यान देना अच्छा, होता
1: अच्छा। जितना फूल वगैरह आसपास होंगे उतना ही
0: जितने ज्यादा फूल होंगे उतना ही अच्छा है।
1: अच्छा अच्छा। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तरीके कितने हैं, किस तरह से मधुमक्खी पालन करना चाहिए, उसके जो स्टेप्स है उसके बारे में कुछ बताइए।
0: उसके बेसिकली दो ही वो आपके ऊपर, वो फार्मर्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो ये करना है। एक तो कॉमन जो घरों में मिला जाता है और वर्ल्ड ओवर ओपनली जो हर एक आदमी रख सकता है वो होता है होम स्टेट बी कीपिंग, वो बैकयार्ड बी कीपिंग बोलते
1: अच्छा,
0: हैं। आप
1: अच्छा।
0: पाँच बक्सा, दस बक्सा, पंद्रह बक्सा आपके ये सूटेबिलिटी के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट का अनुसार आप करके आसपास में आराम से रख सकते हैं,
1: छोटे क्षेत्र में।
0: हाँ यस, छोटे क्षेत्र में, स्मॉल इन विलेज में हर एक घर में पाँच दस बक्सा तो आप रख ही ले सकते हैं। दूसरे जो है कमर्शियल फार्मिंग होता है, ये कमर्शियल फार्मिंग के लिए उसके लिए मैनेज करना पड़ता है, ये तो 200 300 हजारों में बक्स रखना होता है, वो ऐसे बिग फार्म एरियाज जहाँ होता है, कल्टीवेशन साइट्स हो या टोटली वर्जिन फॉरेस्ट हो, वहाँ आपको प्रोफेशनली आदमी रह करके उसको मैनेज करना होता है। उसके लिए मैनेजमेंट स्पेशली फुल टाइम देख रेख वाला करना पड़ता है, वर इज बैकयार्ड वाला को आप घरों में कोई भी उसको देखभाल कर सकते हैं, फुल टाइम आदमी का जरूरी नहीं होगा। कमर्शियल में फुल टाइम आदमी लगा करके दैट टू विथ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मशीनरी सपोर्ट लेना, गाड़ी घोड़ा साथ में रख करके वो करना पड़ता है। ऐसे दो तो
1: अच्छा।
0: ये शुरू करने के लिए आपको एक है सबसे आगे, आपको मधुमक्खी की बेसिक थोड़े बहुत जानना पड़ेगा, कैसे हैंडल करना है, वो क्या खाते हैं या कैसे सोते हैं, कैसे ब्रीडिंग करते हैं, कैसे बच्चे पैदे करते हैं, कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ से वो रस लेते हैं, और उसका ये उसको कुछ बीमार हजार हो गया तो कैसे उसको हैंडल करना है।
1: अच्छा।
0: उसके टिपिकल्टीज, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरे जो है आपके पास जंगली जैसा ना हो, पुराना जैसा, साइंटिफिक बी कीपिंग्स, आप जिस स्पेसिस को रहना चाहते हैं आप उसको उसके जतन करने पड़ेंगे आपको। दूसरे जो है आपके आसपास में सफिशेंट वो पेड़ पौधे जो पुल देने वाला होना पड़ेगा। दूसरा जो है उसके नेक्स्ट में आपके पास कॉलोनी होने से भी यहाँ कई प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रीडेटर्स है, चिड़िया हुआ, आपका लिजर्ड बुगरा हुआ, वो आकर के उसको खा देते, इवन दिस हिमालयन हॉर्नेट्स वास्प जो होते हैं वो कॉमन प्रीडेटर्स है। पैरासाइट्स हुआ, पैरासाइट जैसा ये उसका रस को चूसने वाला कॉकरोचेस, देन और कुछ इंसेक्ट है, ग्राफ्स है अंदर जाकर के उसको जो उन लोग जो मधु बना के रखता है, मधु को खाने वाला होता है। देन डिजीजेस भी है, टाई ब्रूथ सेक्स है, उनको डायरिया भी होता है, डिसेंट्री भी होता है।
1: अच्छा।
0: उसके अनुसार उसको देखना पड़ता है कि कैसा हैंडल करना है, तोरे जानना पड़ेगा।
1: जी जी।
0: और दूसरे है ये उसको मधु को बरा के रखना नहीं है, घर को भी पूरा, ये एक बहुत ही रेशनल एंड समझदार वाला जानवर है। जब वो देखता है उसके हाइप से पुल हो गया,
1: छत्ता
0: जो बनाने का और जगह नहीं है, तब तो उन लोग उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह एब्सकॉन्डिंग करने का टेंडेंसी में चक्कर में रहता है, वो जाता ही है, इसलिए उसमें से एक दो हाइव हमेशा खाली रखना होता है ताकि इसको पोर ग्रोथ, तो ऐसा होने से वो चोर के जाएंगे नहीं।
1: अच्छा।
0: ऐसी ऐसी नॉलेज है।
1: अच्छा।
0: और जो लार्ज स्केल कमर्शियल करते हैं वो सीजनल रिक्वायरमेंट का हिसाब से आपके बक्सा को जहाँ जहाँ फार्मिंग एरियाज है या तो ऐसी डोमिनेंट फ्लावरिंग ट्रीज को रिकॉग्नाइज

0: करके सीजन हिसाब से बक्सा को इस एक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कीप ऑन वो माइग्रेट करते रहना पड़ता है पैदावार के लिए। अच्छा। हाँ उसमें बागान मालिक को पैदा भी मिलता है, हायर करते हैं, आप एक एक ट्रेड कर लेता है कि चलिए मेरा एप्पल ऑर्चर्ड है या अच्छा। मेरा ऑरेंज का ऑर्चर्ड है, आपका बक्सा मुझे इतना चाहिए, मैं आपको पोलिनेशन के लिए उस पार बक्सा में 100 रुपीज 200 रुपीज 1500 ऐसे करके वो बार्गेन होता है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: ये माइग्रेशन होता है और फार्मर्स को भी पैदा है उसमें, वो किसान को भी पैदा है, जो मधुमक्खी मालिक को भी पैदा है, हनी मिल गया उसको, पैसा मिल गया रेंट में, उधर उसको प्रोडक्शन मिल गया, इंक्रीज प्रोडक्शन मिल गया, ये चलते रहता है।
1: अच्छा,
0: कॉमन प्रैक्टिसेस।
1: अच्छा, जो आपने पहले कहा कि सबसे पहले कि उन्हें जो जिस तरह से मधुमक्खी के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए उनके रहन सहन के बारे में, तो किसान कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले, कहाँ से ये जानकारी हासिल करे?
0: एक तो हमारे डिपार्टमेंट में मैं समझता हूँ हर एक जो एग्री कॉलेजेस एग्री यूनिवर्सिटीज ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंटोमोलॉजी एज ए डिपार्टमेंट बेनिफिशियल डायरेक्ट बेनिफिशियल एंड इनडायरेक्ट बेनिफिशियल वाला एक ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये हनी जो है डायरेक्ट बेनिफिट्स में मिलता है, इनडायरेक्ट भी है, सो दिस इज ए कंपलसरी हर एक, चाहे वो एग्री बीएससी हो या बीएससी हॉर्टी ग्रेजुएट्स हो या जनरल साइंस जो जूलॉजी करता हो, वो बेसिक नॉलेज हर एक को है।
1: अच्छा,
0: ये कंपलसरी। नाउ जो डिपार्टमेंट का आप बात करें, नॉलेज ट्रेनिंग्स का बात करें, ये 1952 से देखा जाए इसे सब्जेक्ट को केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का है। 1976 ऑनवर्ड्स पोलिनेशन के लिए ये पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इनपुट्स का हिसाब से आज का डेट में देखता है ये एग्रीकल्चर कमीशन को दिया गया, तो उसका चलते नेशनल बी बोर्ड जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में है वो हेड है कंट्री में, बट इसको वेराइडली इम्प्लीमेंट करते हैं। एक तो केवीआईसी जैसा बोला वो नेशनल लेवल का योग्य इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का, दूसरा जो है स्टेट में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड उस उन लोग भी ये करते हैं, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये हिसाब अच्छा। से और मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर से बोले तो ये एमआईडीएच के अंदर कवर्ड है। एमआईडीएच जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का अंदर पोलिनाइजेशन का रूप में उसको करता है। इंडिपेंडेंटली एनबीबी भी इसको इम्प्लीमेंट करता है डायरेक्टली टू फार्मर्स, उनके रजिस्टर्ड फार्मर्स के थ्रू। और ये जो है नाबार्ड के अंदर भी एक बैंकेबल स्कीम है। अच्छा, बैंकेबल प्रोजेक्ट है।
1: अच्छा।
0: तो हर एक से आपको जो है किसी यूनिवर्सिटी किसी एक से ये इसका जानकारी ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: एक तो हमें स्टेट में जिम्मेदारी दिया डिपार्टमेंट के अंदर एक मिशन बना करके रखा है अरुणाचल प्रदेश बी एंड हनी मिशन।
1: अच्छा, तो जो जानकारी लेना चाहते हैं वो केबीआईसी के साथ पास में भी जा सकते हैं।
0: yes.
1: भले ही वो स्ट्रीम वो क्षेत्र से ना हो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र।
0: yes.
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहूंगी, हमने बात की है किस तरह की जगह चाहिए मधुमक्खी पालन करने के लिए और किस तरह से देख रेख रहना चाहिए उसके बारे में, तो अब मैं जानना चाहूंगी कि जो आखिरी वाला जो पहलू है एक्सट्रैक्ट करना, जो हनी मधुमक्खी पालन में जो शहद को निकालना होता है उसके बारे में कुछ बताएगी किस तरह से करें और क्या ध्यान में रखें।
0: हाँ, ये पुराना जो अनसाइंटिफिक ट्रेडिशनल एक्सट्रैक्शन का बारे में अनहाइजेनिक वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आज के डेट में जो साइंटिफिक क्लियरिंग में क्या है कि बी स्पेसिस के अनुसार हनी एक्सट्रैक्टर मशीन है मार्केट में अवेलेबल है आज के डेट में।
1: अच्छा।
0: वो आप कौन सी स्पेसिस आप पाल रहे हैं और आपने वहाँ बी हाइव्स कौन सी साइज का यूज कर रखा है उसको आपको जानकारी होना पड़ेगा, उसी हिसाब से एक्सट्रैक्टर, नहीं तो वो हाइव्स फिट नहीं होंगे। नाउ इसमें होता क्या है, जो मक्खी का हाइव साइंटिफिक हाइव्स के अंदर में नीचे जहाँ बच्चा पैदा होता है उसको ब्रूड चैम्बर बोलते हैं, नीचे रख देते हैं, बीच में एक टेक्निकली डिजाइंड एक्सिट होता है जहाँ रानी ऊपर आ नहीं सकता, ओनली वर्कर्स चौथा साइज होता है वो आकर के मक्खी बना सकता है, उसको सुपर चैम्बर बोलते हैं। तो सुपर चैम्बर के जो फ्रेम है वो उस एक्सट्रैक्टर में पिट होना पड़ेगा, एकदम पिट होना पड़ेगा। नाउ पिट होकर भी उसका जो शहद को बड़ा करके सिकल्स में ये लोग कॉम्ब में क्या करते हैं कुछ दिन रखता है।

0: ये हनी हनी बी लोग जो है जो डायरेक्टली हनी लेकर आता है उसमें काफी मात्रा में मॉइस्चर्स होता है 60-70-80% ऐसा करके उसको खुला रखता है। उसको नर्स लोग पेनिंग करके अपना पंखा से पेनिंग करके उसका मॉइस्चर को निकाल देता है और उसमें कुछ परमेंट करने देता है। जो परमेंट हो गया उसको कैप करता है, कैप करके रखता है ना। आपको आपको जब ये हार्वेस्ट करने का होने से वो देखना है कि वो कैप है कि नहीं है। आप इमरजेंसी वाला होने से अनकैप वाला भी कर सकते हैं और कैप वाला को उसको एक स्केपल नाइफ के साथ ऊपर को कैप को रिमूव करना होता है। देन वो फ्रेम को शहद के साथ उसमें डाल के वो स्ट्रक्चर में उसका चक घुमाने वाला अपेंडिजेस है वो घुमाने से सेंट्रिपिकल पोर्स में सारे हनी जो है चिटे मर के बाहर आ जाएंगे। कम्ब वहीं का वहीं रहेगा। उसी कम्ब को बिना डैमेज करके फिर अंदर में प्रेम में रख देता है। ना हनी जो इसमें जो होता है जो मचोट वाला हनी जो है बहुत दिन तक आपको रख सकता है, वो जल्दी सरे उरेगा नहीं है। और जो इमेच्योर वाला है जिसको कैप नहीं किया वो उसमें मॉइस्चर परसेंटेज ज्यादा होता है और जल्दी सर जाता है। और हैंडल करते समय ये ध्यान रखना है कि आपके कम्ब जो है टूट पूट करके वहां में हनी का साथ ना गिरे। इसको क्या ये तीन चार चीजें क्या रखना है। और उसमें ये कतई वो ब्रूड जो बच्चा होने वाला वो वाला हनी हनी का साथ मिक्स होने से वो हनी तुरंत ही स्पॉइल होने शुरू होगा।
1: अच्छा, खराब हो जाएगा।
0: हाँ यस, खराब हो जाएगा।
1: अच्छा, शहद निकालने के बाद पैकेजिंग की बात आती है तो उसके बारे में कुछ बताइए।
0: पैकेजिंग ऐसा है कि हनी दिखने में लिक्विड दिखता है किंतु उसको बाजार में मेजरमेंट में उसको केजी का रूप में लेता है बिकॉज ऑफ इट्स विस्कोसिटी। एक वो विस्कोसिटी हाई होने का वजह से एक टू मॉइस्चर होने का वजह से इज इन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक बोले आप ये समझे कि एटमोस्फेरिक मॉइस्चर को एटमोस्फेरिक पानी को वो हीच करके अटैच करके रख सकता है।
1: अच्छा।
0: जैसे ही अटैच होता है तो वो सरना शुरू होता है।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए क्या ये कि एक आप होनी निकलते समय मच्छर वाला होनी लिया हो, आपने उसमें लिटरिंग अवॉइड किया हो, उसमें धरती गंदा उंडा को ये किया हो,
1: यस,
0: देन उसको आपने सही से डबल डबल फिल्टर करके उसको निकाला हो, तार्द जो होता है वो मच्छर होनी होने से आप नेचुरली भी आप उसको ऐसे रख सकते हैं। दूसरे जो है जो इमच्योर होनी को उसको आपको ये थोड़ा प्रिजर्व करना पड़ेगा, मेथड्स एडॉप्ट करना पड़ेगा, चाहे पश्चराइजेशन इनडायरेक्ट बॉइलिंग जैसा होता है। अदरवाइज आजकल मॉडर्न डेज में वो डिजाइन वाला मशीन प्लांट साइंटिफिक प्लांट वाला वो आते हैं। मिनिमम वाटर परसेंटेज को अप टू 80% तक रिक्वायरमेंट है तो 7.8 किंतु आपको जो है 20% तक मॉइस्चर जो है रिमूव करना पड़ेगा उसको। एक दूसरा ये 80% से ज्यादा मॉइस्चर उसमें रखेंगे तो वो जल्दी सरना शुरू होगा क्रिस्टलाइजेशन।
1: अच्छा।
0: दूसरे आपके पैकिंग मटेरियल्स में भी टू पानी होने से और वो गंदा होने से उसको उसमें जल्दी वो होनी में खराब आ जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए होनी बोतल्स को स्टरलाइज करना पड़ेगा, स्टरलाइज एंड ड्राई।
1: अच्छा।
0: ड्राई करके उसको रखना। आजकल के जमाने में मॉडर्न डेज में बाजार में बहुत सारे शीशे का हो या प्लास्टिक का फूड ग्रेड प्लास्टिक का बहुत डिफरेंट अट्रेक्टिव साइज में कैपेसिटी वाला बॉटल्स मिल जाता है, उसमें ये कर सकते। दूसरे अनदर जो है लास्ट में वो बॉटल्स में डालने का पीछे कंटेनर्स में डालने का पीछे भी उसको सील एयर टाइट सील रखना पड़ता है। एयर होने से मॉइस्चर उसमें चला जाएगा, जल्दी
1: खराब हो
0: जाएगा।
1: अच्छा। अच्छा, तो अब हम जानते हैं कि बड़े स्केल में और छोटे स्केल में जो मधुमक्खी पालन को स्टार्ट करने के लिए कीमत कितनी लगेगी जी?
0: मैडम वो डिपेंड करेंगे दो चीज पे। एक तो आप कौन सी मधुमक्खी स्पेसिस को आप कमर्शियल वर्ल्ड ओवर में बोले तो वो एपिस मेलिफेरा उसको ये करते हैं, या इंडिया में हम लोग का अपना ये सिचुएशन में हम लोग एपिस सिरानाई अभी बढ़ावा दे रहे हैं। अभी डिपेंड करेगा कि कौन सी स्पेसिस आपने शुरू करना है।
1: चा, चा, चा।
0: एक दूसरे जो है आप कितने बक्सा कितने कॉलोनी कितने मात्रा में रखना है वो डिपेंड करेगा।
1: अच्छा अच्छा, ये जो सब्सिडी प्रोग्राम से स्कीम्स है जो मधुमक्खी पालन के लिए सरकार की ओर से, उसके बारे में कुछ बताइए सर।
0: हाँ, वो एक मैंने अपने आपको बताया केवीआईसी के अपने प्रोग्राम से
1: जी।

0: उन लोग अपने से इम्प्लीमेंट करते हैं उसको. स्टेट के भी ICS ऑफिस है, हम लोग हमारे ईटानगर में भी हम लोग का रीजनल ऑफिस है. सेरिकल्चर थ्रो इन लोग ये करता है. देन हॉर्टिकल्चर के अपने स्कीम्स है, नाबार्ड्स ये करते हैं. उसमें सब्सिडी रेट जो है डिफरेंटली है, नाबार्ड के अपने प्रेस्क्राइब नॉर्म्स होते हैं. तो हम लोग डिपार्टमेंट में जो कर रहे हैं वो बेसिकली पोलिनाइजेशन के लिए, हम लोग उसको डेमोस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी नो हाउ ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं.
1: अच्छा, तो अब बताइए सही समय मधुमक्खी पालन शुरू करने की कब होती है साल में जी?
0: ये तो कोई भी किसी भी पार्ट में साल में शुरू कर सकते हैं, बट बेस्ट टाइम टू ये एटम एंड स्प्रिंग, जब वेदर ड्राई हो, एम्बियंट टेम्परेचर हो, क्योंकि मधुमक्खी बहुत ठंडा बिलो 10 डिग्री टेम्परेचर में वो उड़ नहीं पाता, वो काम नहीं करते. एबव 35 होने से भी उन लोग स्लागिस हो जाता है, तब भी वो उड़ नहीं पाता है. सोमवेयर 10 to 35 एक मीडियम एवरेज मधुमक्खी पालने का वो ये देखा गया है. उसका दूसरा है कि वो रेनी सीजन में ये बाहर जा नहीं पाता है, टेम्परेचर सही हो तो भी काम उड़ नहीं सकता है रेनी में. तो इसलिए बेस्ट सीजन ये कि नवंबर दिसंबर, अर्ली पार्ट ऑफ दिसंबर. एक तो ये मार्च अप्रैल जब नया नया पूल आता है बाहर में, बहुत सारे प्लांट्स है, प्यार वेदर हो, पूल खूब से हो, ये बेस्ट सीजन है.
1: अच्छा, कितने महीने में तैयार हो जाती है शहद?
0: वो डिपेंड करेंगे दो चीज में, एक तो आपके कॉलोनी की स्ट्रेंथ कितने है, आपके कॉलोनी के स्ट्रेंथ मतलब उसमें वर्कर्स पॉपुलेशन कितना है एक. दूसरा जो है उस सराउंडिंग में कितने पूल है, पूल बियरिंग ये प्लांट है जहां से वो प्रोपोलिस एंटायर्स ये नेक्टर्स लेने का जगह है, वो डिपेंड करेगा. अदरवाइज ये सब सही होने से 15-20 डेज में भी आप हार्वेस्ट कर सके.
1: तो आखिर में सर हम चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स को कोई संदेश दे सर.
0: हाँ, ये मक्खी पालन इतना इम्पॉसिबल भी नहीं और इतना इजी भी नहीं है, हर एक उसको शुरू कर सकता है. आप फुल टाइम रूप में, पार्ट टाइम रूप में, आप कोई भी प्रोफेशन का हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, आप डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट्स हो, ये आप घर में ये रख सकते हैं. उसके लिए आपको प्लेट लैंड का जरूरी नहीं पड़ेगा, लार्ज एक एरिया लैंड जरूरी नहीं पड़ेंगे, डेली खिलाने नहीं पड़ते. दूसरे बिजनेस के कंपेयर में भी बहुत सारे पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं होता है. एक बार आपने अच्छा बक्सा ले लिया, वो 4-5 साल और इसे भी ज़्यादा आप उसको सही से केयर करें तो यूज़ कर सकते हैं उसको. तो इसी ध्यान देने पड़ेंगे कि मक्खी का जो ज़रूरत है उसको जीने का, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, उसको जैसा पुल देना हुआ, देन प्रीडेटर्स लोग को, कुछ लोग को देखना हुआ, ऐसे थोड़ा सा अटेंशन देने से आप जो है आराम से उसको शुरू कर सकते हैं. हर एक कर सकता है. हमारे स्टेट अरुणाचल जैसे कंटेक्स में बहुत सारे जंगल में फ्लावर बियरिंग प्लांट्स है जहाँ से वो नेचुरली लेता है. वो ये सही चीज़ को हम लोग उसको उन लोग को मुहैया प्रदान करें तो इन लोग जो है आपके लिए परमानेंटली हर रोज हनी बना के बैठेंगे आप और हमें सिर्फ उसको हनी को बेच के पैसा ही निकलना है.
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के कृषि जगत कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए. तो ये थे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से रिसर्च ऑफिसर तेजी तोराजी. तो इसी के साथ ही आज के कृषि जगत में बस इतना ही. अब मुझे यानी कि केन्यम आंगो को आज्ञा दीजिए. नमस्कार.
2: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च, ESS सेक्टर, ईटानगर, नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल. तारीख है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक, यानी कि 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक. इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेचीतारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुंडे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा, गुवाहाटी हाईकोर्ट, ईटानगर बेंच. अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस, विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं. याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च, ESS सेक्टर, ईटानगर, नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और तारीख है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक. धन्यवाद.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।
1: सयना सिद्धाता आकाशवाणी इटानाक्षी लेयशु सो लेरिम किसान वाणी सनोम्बर सयना सिद्धाशुद लेरिमा अरुणाचल गति शुंग सजिंग चिकी प्लेंकंग रिसर्च ऑफिसर कुजब तेची तोरा देवका चटी सुसुदी सनोम्बर पेनाशे कंडिशुगन आकाशवाणी इटानगर किनबुम अंगोयंबर मीडियम एप किलो हर्स केचिलेन खलेथी मीटर गैथिक ने कब चिन्ह सिंह था नहीं का सही ना चीज नोटिंग खंग तमाशे नंबर सही ना दानव तो चुचक रोक ने कर मखले चौंगी दालेरिम से राजी को सुधो सही ना ओसो ना शीतु से तमाम चंपन लेकुं यर एडीसी ने तमाम चंग डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज कुछ अपरंचि लेरा सी लोंटिंग खंग तमाम अपयो सेरा ना कथी सना सा सेवा संकल्प उत्सव नमो सेवा अन कही कहानियां निगु लेगु निगा नगो चिंदे चुपक तेरक चिथी रेजे निम चिक्सुम कुंसु शुक चुचे ठीक तर तवंग ओल मार्केट का नुकर नाटक निना लेमदांग थापतन थी तोन्यो किंपर उच थापतन चुक जेजे चोवचित चिने नितुम खैने नि संपचे जहर जेखब चित यरके गयो जेखब थी शुंजुक निंग जेखब निंगा शुंजे नासी ड्रग्स निने न्यूज़े बेचे मुतों यकोर यंबर ये चीन ने देते ने नगो चिंदे चुपक तेरक चीती चेक्सुम गुंसु शुक चुचे ठीक तोर चुचे ब्लिस अंबा तवंक ओल्ड मार्केट कुक जेटी मार्क कुक थोर रब्दन फोटो स्टूडियो कुक सुंदर संभा गरी चुंजुक कायुक निं उच समय बुद्ध का गरी ये थे मोचन्ये कफेपने संजनं शिटु जेतों जोंबुन लेखोंगेर पेपो सेराचितुस सयनादा दशनबतुक लेरिम देटेनिंग छुजो कुशुस सनासा दतसितिक छुजे ग्रोक निंकम खले चिनिसचे लेरिम जरोका हिंदीगा छुसु सनासा छुजे ग्रोक निंकम खने प्लिचे शेदन लेरिम सयनादा शु लेरिमा शिमबच लयने दाउंगो बकिन द मलयना सेदनो शेतन जेवे शब्दन निंगो मनम दनो सनासर दशनप चुचनिस चे आकाशवाणी दिल्ली के रिले चुसो हिंदी का संगीन चुचनिस ने कमल लगा चे इंच का संगीर दुनिया के लेरिम स्वास चर्चा दशनप चुचनिस ने कमल चिचे चुचनिस ने कमल कले चिचे लेरिम सास और आवाज आकाशवाणी इटन नक रिले चुसो हिंदी का संगीर दशनप चुचनिस ने कमल खने लगा चे चुचनिस ने कमल खने चिचे आकाशवाणी इटन रिले शुसु इंचिका सिंगर लेरिम कोमे तराने दशनुप चुचे निस्निंग काम खने चिले गचे सयना दशु लेरिमा लता मंगेच कर सिंगरो सम सर फरोशी की तमन्ना सन्नासा लेरिम पुराने हिंदी फिल्म गीत दशनुप चुचे गिचे सयना से दशु लेरिमा संगे एतो मानसि वासिप जे थुकते नंगो हिंदी फिल्म सम नि बखाशे सनासा दशनिप छजे गेत नका मजिले गचे आकाशवाणी इतो नक रिले छुसो इंजिक सिंगर छजे गेत नका मखले छचे आकाशवाणी दिल्ली के रिले छुसो जमदन सिंगर छजे गेत नका मखने लेगचे आकाशवाणी दिल्ली के रिले छुसो हिंदी का सिंगन द छजे दुगुचे आकाशवाणी दिल्ली के रिले छुसो इंजिक सिंगर सयना दशनप छुदो दुख न कमे छुगो छे लोंटिं का तवांग दशु क्लेरिम बना छा छंदु इंबर सयना दान नगोर चिलो नि तोंग खले ग्रो लोक चिन द चपक तेर छि थी रेसे निमक लेरिम ने छुदो खुसु सना सा नगोर कोंजु जु छु तने जे आकाशवाणी दिल्ली के रिले छुसु इंजि का सिंग ने छु तने न कमे छि लिंग जे हिंदी का सिंगर नोन ऑफ छु छु सम जे लेरिम प्रादेशिक संगीत छु छु सम ने कमे खले छि जे लेरिम मेरी बात लेरिम नारी संगीत नगोर कोंजु जु छु छु सम ने कमे खले चिक्सुमचे चुजे ब्लेक ने कम खले चिचे लेरिम राखरंग नमनिंग मतो नमधा लेरिम नौ नप चिचे लेंगे चे नगर नमधा लेरिमा गेचे तुप तुन जनसे देशे नंगो दुंगरब नर्बे ठेंगवा निंगला मतं बटे मक नमधर गुरम धाम चे सना सा नौ नप चुजे लेंग ने कम खले चिचे नगर ने सु खाचन शपा नंग मन पा शुसु समय तो इंपर नौ नप चुजे लेंग ने कम खले चिलेंगे चे रिक्षुंग लेरिम चुजक रोजे लेरिम सदा चुजक रोज ने कम चिचे लेरिम चरोका शेदन लेरिम नौ नप चुजक रोक ने कम खले चे संगीन नोस

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और 7104 MHz पर ये आकाशवाणी का तारांग केंद्र है। समय संध्या के 6:37 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम चरोखा। कार्यक्रम चरोखा में आइए पहले सुनते हैं डीसी कार्यालय तारांग जिला से प्राप्त एक सूचना। तारांग के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि रविवार 11 अक्टूबर 2026 यानी कल दोपहर 1 बजे से तारांग के ऑल मार्केट में तारांग गिफ्ट हब के पास सेवा संकल्प उत्सव के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मद्देनजर जेटी फूड मार्ट से रप्तन फोटो स्टूडियो ट्री जंक्शन तक का सड़क मार्ग दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक यातायात के लिए बंद रहेगा। इस दौरान उक्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही और कार्यक्रम स्थल के आसपास पार्किंग प्रतिबंधित रहेगा। अतः वाहन चालकों से अनुरोध है कि इस मार्ग पर आने जाने से बचे, दूसरा रास्ता का उपयोग करें तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। सूचना समाप्त हुआ। आई श्रोताओ, कार्यक्रम जरोखा में अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारण किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो आई श्रोताओ, पहले आपको आज की शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:44 पर मुनपा कार्यक्रम जदन लेरी में सुनेंगे तवांग मठ के रिम्बुछे और भिक्षो संघ शेदुन ग्यावे शप्तन और गोबामल्लम। शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र

नु प्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर आज शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे खंडू ढोबो जंगमो जिला अस्पताल तवांग के मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तेंजिन गिल्सन के साथ हुए एक भेंटवार्ता। शाम 7:30 पर कार्यक्रम सांझ और आवाज। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमी तराने। आज रात्रि 8 बजे आप आनंद ले पाएंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्किन रात 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9 बजे। तो श्रोताओ, ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 11 अक्टूबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाना की तरह हमारा सभा आरंभ होगा कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात। कल दोपहर 3:33 पर महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कल शाम 4 बजे मासिक कार्यक्रम बाल जगत। इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे माउंट गिशिला इंग्लिश स्कूल तवांग के 10 बच्चों द्वारा एक भेंटवार्ता। शाम 4:30 पर शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 बजे मनपा कार्यक्रम नमथन नेरिम। 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। शाम 5:35 पर कार्यक्रम रिक्शुंग लेरिम। शाम 6 बजे कार्यक्रम लेरिमसेरा। 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर मनपा कार्यक्रम शेदम लेरिम। शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम महफिले कवाली। इसके अंतर्गत पहले आप सुन पाएंगे फिल्म बजरंगी बैजन से अदनान सामी और फिल्म वीर जारा से अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के आवाजों में चंद कवाली। कल शाम 7:25 पर साप्ताहिक कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ। शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आनंद ले पाएंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। कराते 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 8:09। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम चरुखा अब यहीं पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:44 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मनपा में। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। इस बीच नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने व्यापक और कड़े प्रबंध किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से जाने दिया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया है। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम तथा राजनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में आज उन्होंने कहा कि वर्तमान विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि भारत और अफ्रीका वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व वाले नहीं रह सकते। अदिस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का स्मरण किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने यात्रा के दौरान कॉकपिट में हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। ये हमला कैप्टन स्मिथ पर किया गया था। गुजरात के निवासी कैप्टन स्मिथ पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान की कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर ने साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 4th समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क

हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं आइए सुनते हैं खानडोबो जांगमो जिला अस्पताल तवांग के मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तेंजिन गेल्टन से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर पर हुए एक पेट वार्ता। इनसे भेंट करता है सुक्षी तोजुरेमा।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुन रहे आप सभी श्रोताओं का सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में एक बहुत ही विशेष मेहमान उपस्थित है, खंडोडोवा संगमो जिला अस्पताल तवांग के मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तेंजिन गेल्टन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे आकाशवाणी तवांग में और हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में हार्दिक स्वागत करती हूँ।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। तो श्रोताओं, आज हम डॉक्टर साहब के साथ हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के बारे में चर्चा करेंगे, जो हम में से अधिकतर लोग इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप क्या है, इसके कारण क्या होता है।
2: सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ मौका देने के लिए कि तवांग वासियों को कि मैं जागरूक कर पाऊँ। हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी, तो बीपी काफी हाई होना हमारे यहाँ पे अपना लोकलिटीज में मनपा समाज में भी काफी हाई प्रेशर के पेशेंट लोग रहता है। तो हाइपरटेंशन एक मेडिकल डायग्नोसिस, इसका बहुत सारा गाइडलाइंस रहता है। तो पर्टिकुलरली अपना जैसे कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का अपना गाइडलाइन, जीएनसी का गाइडलाइन, ऐसे सिस्टमेटिक मेडिकल जर्नल्स का काफी गाइडलाइन होता है। तो लेटेस्ट में इट हैज बीन अपडेटेड यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का अपना गाइडलाइंस में हाइपरटेंशन को कैसे डिफाइन करता है कि बीपी। तो बीपी में दो चीज होते हैं, ब्लड प्रेशर जब चेक करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब 120 और 80 से नीचे है तो उनको हम नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। जब 120 और 120 to 129 सिस्टोलिक बीपी और 80 से नीचे आया उसको हम बोलते हैं इलेवेटेड और इलेवेटेड प्रेशर। के बाद आता है स्टेज वन हाइपरटेंशन। स्टेज वन में आता है 130 से 130 to 139 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 से 89 डायस्टोलिक प्रेशर। फिर स्टेज टू में आता है मोर देन 140 सिस्टोलिक प्रेशर और 90 के ऊपर जो भी है उसको स्टेज टू हाइपरटेंशन कहता है। तो स्टडीज के ऊपर में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इवन यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन को डिफाइन करते हैं बाय चेकिंग द ब्लड प्रेशर।
1: जी, और ऐसी समस्या मनुष्य को कब होते हैं और इसके कारण क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: हाइपरटेंशन एक ऐसा चीज है जो बच्चों में भी दिखाई दे सकता है और बड़ों और बुजुर्ग में भी दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है कि हाइपरटेंशन को दो प्रकार में डिवाइड करता है, जैसे कि प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है एंड देयर विल बी सेकेंडरी हाइपरटेंशन। यानी कि प्राइमरी हाइपरटेंशन कब कहता है जो उनका कोई दूसरे बीमार की वजह से उसका प्रेशर हाई नहीं।
1: अच्छा।
2: तो उसको कहता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। जो जनरली आपका जेनेटिक्स में अपना देखा गया है कि अगर माँ पिताजी या उनमें से कोई भी एक हाइपरटेंशन रहता है, बीपी हाई रहता है। अच्छा। तो उनका बेटा या उनके बच्चों में भी प्रेशर हाई का संभावना रहता है। फिर होता है एक सबसे कॉमन कारण है आजकल के जमाने में रहन सहन का ओबेसिटी, सिडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो हमारा बसल मेटाबॉलिक इंडेक्स ओवर वेट या ओबेसिटी के कारण वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज जो आज हमारे लिए जो हाइपरटेंशन का कॉज है। इवन कहता है कि इवन द 9 billion पीपल आर सफरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड हाइपरटेंशन के वजह से। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिडेंटरी लाइफ स्टाइल जो ओबेसिटी कराता है। ये अभी जैसे हो गया आपको मैंने बताया जेनेटिक्स हो गया, फिर एज, एज इज वेरी कॉमन। तो हायर द एज यानी कि बुजुर्गों में बीपी हाई होने का संभावना ज्यादा रहता है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: तो तीन हो गया और रेसेस, रेस यानी कि ब्लैक पीपल में हाइपरटेंशन का ज्यादा रहता है। फिर खान पान में, जो ज्यादा नमक का सेवन करता है, जिनका एक्सरसाइज कम है, तो इन्होंने में हम लोग ने देखा है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन यानी कि एसेंशियल हाइपरटेंशन काफी होता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन विल हैव, इसका अपना कारण बहुत सारा है, जैसे कि कशिंग सिंड्रोम हो गया, हाइपरलाइड्रोस्टेनोजन कॉन सिंड्रोम हो गया, इवन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, तो ये और किडनी खराब होने का कारण, ये सब बीपी हाई कराता है, दैट इज लाइक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सो यहाँ पे हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे एसेंशियल हाइपरटेंशन ताकि हम लोग उनको उसके बारे में प्रिवेंट कर पाए।
1: डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि बच्चों में तो हाइपरटेंशन होते ही नहीं है, लेकिन होते हैं, है ना? और साथ साथ जो एडल्ट से हम बड़े लोग हैं, हमें भी अगर जब हाई बीपी होते हैं तो इसके कारण बहुत ही ज्यादा है, हमारे खान पान पे तो

0: सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और साथ साथ किसी को अगर मोटापे का समस्या है तो भी संभावना है, किसी को व्यायाम की कमी होती है, तो किसी की जेनेटिक्स होते हैं, उनके माता पिता को अगर हाइपरटेंशन है तो बच्चों में भी होने की बहुत ही बड़ा संभावना है ना। और साथ साथ डॉक्टर साहब, अब हमें कैसे पता चले कि हमें या किसी और को हाइपरटेंशन है, तो लक्षण क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होगा?
1: जनरली हम लोग देखा जाए कि हाइपरटेंशन के पेशेंट को, मरीजों को भी जब बीपी काफी हाई रहते वक्त भी उनको कुछ होता नहीं, तो इस वजह से उन्हें कोई सिम्टम्स या साइंस नहीं होता है।
0: अच्छा,
1: तो जनरली जब आता है तो काफी टाइम होता है, लेट हो गया, तो जब आया कि कैजुअलिटी यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया कि वो स्ट्रोक होके आया तब पता चल रहा है, किसी का किडनी खराब हो गया तब पता चल रहा है कि प्रेशर हाई होके इस वजह से। तो कहा जाता है कि एवरी नॉर्मल पर्सन, हर नॉर्मल पर्सन को साल में एक बार कम से कम अपना बीपी की जांच करना चाहिए।
0: जी जी।
1: और जो जो पेशेंट है जैसे कि डायबिटिक है, किडनी जिसका खराब है और जिसको हार्ट डिजीजेस है, अन्य और कारणों की वजह से, उन लोगों को रेगुलरली बीपी चेक कराते रहना, क्योंकि उनमें साइन सिम्टम्स ज्यादा रहता नहीं। और जनरली उनको हम एडवाइस कर सकते हैं जो मोटापा का शिकार है, जो ही ओवरवेट है या मोटापा है, उनको तो, और डायबिटीज है, उनको तो बीपी जरूर चेक करना चाहिए।
0: और डॉक्टर साहब, इसकी प्रिवेंशन किस तरह से करनी चाहिए, कि रोकथाम करने की तरीका क्या क्या होता है, किस तरह से करनी चाहिए कि हम उच्च रक्तचाप समस्या का शिकार बने ही ना?
1: उसमें होता है कि हेल्थी लाइफस्टाइल, तो जिनको हम इवन हाइपरटेंशन है, जिसको बीपी हाई रहता है, उनको भी हम एडवाइस करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज में यू कैन डू एनी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ब्रीथ के बाद डायनेमिक एक्सरसाइज, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करते हुए मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ये माइंडफुलनेस, ये सबको प्रैक्टिस करना होगा। और दूसरा है कि आजकल कहते हैं डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि डैश डाइट, जिसमें हम लोग नमक कम खा रहा है। WHO का गाइडलाइन में कहता है कि आवर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है 2300 मिलीग्राम ऑफ सोडियम इनटेक। तो सोडियम इज वन ऑफ द कल्प्रिट, जो सोडियम काफी ज्यादा कंज्यूम करता है नमक, तो उन्होंने देखा है तो 2300 मिलीग्राम पर डे इज द डाइटरी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। और जिनको हाइपरटेंशन है उनको कहा जाता है कि 1500 मिलीग्राम से ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए नमक का। उसका डैश डाइट में आपका आता है नट्स और लो फैट डायरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट और पोल्ट्री मीट, उसके बाद ज्यादा हम लोग को फाइबर्स, ये सब कंजम्पशन करना चाहिए। तो इसको कहता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन और रेगुलर एक्सरसाइज। और अगर उनका ये अल्कोहल का कंज्यूम करता है तो अल्कोहल को काफी डिक्रीज करना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। अगर करता नहीं है तो वेरी गुड है, लेकिन अगर करते हैं तो उसको मॉडरेट अमाउंट में, तो दिस विल हेल्प मतलब हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखने में।
0: जी डॉक्टर साहब, हम आशा करते हैं कि आपने जिस तरह से रोकथाम लगाने की तरीका बताए हैं, हमारे श्रोता उसे जरूर आजमाएं। लेकिन किसी को अगर हाइपरटेंशन हो जाते हैं, किसी का उच्च रक्तचाप है, तो उसको आगे जाकर शरीर में कोई और समस्या आ सकती है? हालांकि आपने कुछ कुछ समस्याओं के बारे में हमें पहले ही बता ही दिए है, तो उसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं?
1: इसको कहते हैं साइलेंट किलर। सडनली अगर बीपी काफी हाई हो गया तो हाइपरटेंशन इमरजेंसीज में, तो कैजुअलिटी में लोग आते हैं जब उनको सर बहुत दर्द हो रहा है या ऑर्गन डैमेज हो गया, तो जनरली तो इनको तो आना ही होता, आ ही जाता है कैजुअलिटी में। बाकी जो पेशेंट्स होता है जो बीपी हाई रखता है, दवाई नहीं लेता है या फिर अपना लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया है, तो पैथोजेनेसिस, इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है कि धीरे धीरे ऑर्गेन को डैमेज करता है, तो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा रहता है, जैसे कि पेशेंट को कभी भी इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट अटैक होने का संभावना रहता है। फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो खून गाढ़ा होने के वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब होने का चांसेस होते हैं कि अपना नस बंद होने का, जहां से हमारा ये शरीर में आर्टरी ये सब ब्लॉक होने का चांसेस रहता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम कहते हैं। फिर स्ट्रोक है, जो हमारे यहाँ ताओं में भी काफी देखा जाता है कि पेशेंट बीपी कंट्रोल नहीं रखता है और सडनली बीपी हाई हो जाता है, फिर देखता है कि आइदर इस्केमिक स्ट्रोक भी दो प्रकार का होता है, एक सर पे ब्लीडिंग होने की वजह से या तो खून गाढ़ा होने की वजह से तो ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहे, और एक मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का कोई पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से स्ट्रोक होता है। तो दोनों हाइपरटेंशन होता है, और हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ज्यादा इस्केमिक स्ट्रोक देखने को ज्यादा मिलता है। किडनी डिजीज जो हमारे यहाँ पे है वो भी एक बहुत ज्यादा देखा जाता है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन ओनली। बीपी हाई रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है, तो किडनी भी डैमेज हो जाता है। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, जिसको कहते हैं आंख देखना भी बंद हो जाता है, रेटिना डैमेज हो जाता है, और हमेशा

0: वो ब्लाइंडनेस का शिकार भी रहता है। तो बीपी को हम कहते हैं, हाइपरटेंशन को कहते हैं कि साइलेंट किलर रहता है,
1: जिसका रक्तचाप सही नहीं है, उसे शरीर में कोई और समस्या पैदा करने की बहुत ही ज्यादा संभावना है।
0: जी जी जी।
1: और डॉक्टर साहब, हम विशेष रूप से हमारे तवंग के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करें तो हम हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको हाइपरटेंशन है, तो क्या यहाँ के लोगों में खान पान सही नहीं होने के कारण ही होते हैं या फिर हाई अल्टीट्यूड का एक अलग सा ये समस्या होते हैं?
0: हाई अल्टीट्यूड प्रेशर को डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अपना ह्यूमन बीइंग का अपना जो प्रेशर्स रहते हैं, ऑन्कोटिक हो, वास्कुलर ऑन्कोटिक, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स में डेफिनेटली वो करता है। लेकिन जब पेशेंट यहीं रहता है तो वो क्या हो जाता है कि एक्लामेटाइज हो जाता है। तो यहाँ पे जो ज्यादा हम लोग हाइपरटेंशन देखता है तो वो तो उस कारण से है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, तो वेट ओबेसिटी का कारण बहुत कॉमन है, यानी कि ओवर वेट है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मिसनॉमर रहता है कि अगर आदमी मोटा है तो उसको हेल्दी कहता है, यानी कि एक्चुअली तो हेल्दी उसको कहेंगे कि जिसका बीएमआई, बासल मेटाबॉलिक इंडेक्स, जो इसका 19 से 25 के बीच है। तो 25 से ऊपर है तो ऑब्वियसली ओवर वेट है, और 30 के ऊपर है तो ऑटोमेटिकली इट्स कॉल्ड ओबेसिटी, तो ओबेसिटी का टर्म आ जाता है। तो इससे क्या होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होता है। तो इस प्रकार से हाइपरटेंशन तो एक हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही को देखा गया है हमारा अपना जो रेगुलर क्लिनिकल प्रैक्टिस में।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, और आज जब आप साक्षात हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आ गए हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे आज ही जवाब प्राप्त करनी है, और हमारे कुछ कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि हम हमारे आसपास के लोगों से सुनते हैं। तो उनमें से क्या है कि अगर किसी को उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी है, तो वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेकिन क्या वो दवाइयाँ सारे जिंदगी लेने पड़ते हैं या फिर दवाइयाँ के जरिए उच्च रक्तचाप की समस्या को समय पर ठीक भी कर देते हैं या फिर उसे नियंत्रित कर देते हैं, ठीक नहीं होते हैं?
0: जनरली अगर पहले हम लोग एडवाइस करता है कि लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, यानी कि डाइज डाइट, यानी कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, उनका खान पान में चेंजेस लाना, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट को कम कराना, एक अपना एक हाइट के हिसाब से जो वेट होना है उस पे लेके आना, उसके बावजूद भी अगर नहीं रहता है तो ऑटोमेटिकली उनको दवाई एडवाइस किया जाता। तो ड्रग्स में तो काफी सारा दवाइयां अवेलेबल है, तो अगर दवाई कंज्यूम करता है तो उसके बाद भी एक मिसनोमर रहता है कि हम कभी दवाई नहीं छोड़ पाएंगे। तो दवाई भी अगर एक स्टेज में रहता है कि एक साल कहता है अप टू डेट गाइडलाइंस भी कि एक साल से आप दवाई ले रहे हो और बीपी इज अंडर कंट्रोल, क्योंकि हमने काफी देखा है कि बीपी खा रहा है, जो हमारे यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि बीपी दवाई खा रहा है, कहाँ खा रहा है, कितने साल से खा रहा है, 5 साल से, लेकिन बीपी देख रहे 170/100 है, यानी कि वो दवाई खाने के बावजूद भी उसको फायदा नहीं हो रहा।
1: अच्छा।
0: जब अगर बीपी का दवाई खा रहे हो तो ऐसा एक डोजेस में लेना होगा रेगुलर चेकअप से कि वो टारगेट बीपी यानी कि 130/70 के नीचे अगर हमको रखना होगा, ताकि एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग का होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर पाए। वरना ये क्या होगा कि अचानक से कि स्ट्रोक होने का संभावना बढ़ जाता है, किडनी खराब होने का, जो मैं आगे कॉम्प्लिकेशंस बता चुका हूँ, वो होने का संभावना रहता है। तो दवाई को अगर लेते वक्त तो रेगुलर चेकअप भी करना चाहिए कि बीपी कंट्रोल में है कि नहीं, क्योंकि ड्रग्स को चेंज करना होता है। वंस द ड्रग्स रीचेस द मैक्सिमम, उनका डोजेस में आ गया, तो दवाइयों को भी चेंज करना होता है। सो देखा जाता है कि दवाई और हेल्थी लाइफस्टाइल, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल में एक नमक कम कराया, फिर खान पान में चेंज आ गया, तो इसमें देखा है कि उनका बीपी काफी कम हो जाएगा और नॉर्मल बीपी में रहना चाहिए उसको।
1: जब दवाइयां लेते हैं तो उस समय आपने जिस तरह से बताया कि खान पान का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और डॉक्टर साहब, अभी यहाँ पे एक विशेष सवाल है कि क्या जो महिलाएं होते हैं रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, उनको क्या अगर उच्च रक्तचाप होने से ज्यादा असर उनको हो सकते हैं?
0: जनरली अब जैसे आज था कि एसेंशियल हाइपरटेंशन का कुछ कारण में, जैसे मैंने बताया कि रेस में ब्लैक पीपल में ज्यादा रहता है,
1: जी जी।
0: फिर जेनेटिक्स का भी बात हुआ है, फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल का, ओबेसिटी का, तो उसी प्रकार एक जो बताना भूल गया है कि जैसे कि फीमेल लेडी जो प्रेग्नेंट वक्त बीपी हाई हो जाता है, जैसे उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो उनको तो फ्यूचर्स में जाके बीपी रेगुलर चेकअप करना होता है, क्योंकि वो फिर से हाइपरटेंशन हो ही जाता है। तो आप जब बताए कि रिप्रोडक्टिव और कुछ दवाइयों, जैसे कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन का बात आया है, तो ड्रग्स कोई दवाई भी बीपी हाई कराता रहता है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव एज में जो फीमेल है, मैरिड वीमेन्स है, जो ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स ले रहा है, तो हाई इस्ट्रोजन में जो ले रहा है उनका बीपी काफी हाई रहता है, बीपी हाई, तो उनको अपना गायनेकोलॉजिस्ट से अकॉर्डिंगली कंसिडर करके उनका ओसीपी यानी कि

0: सिप्टिपील को भी मॉडिफाई करना होता है, क्योंकि हायर द एस्ट्रोजन द बीपी हायर रहेगा, और अदरवाइज तो जल्दी मेल एंड फीमेल इक्वालिटी रहता है।
1: जी, और डॉक्टर साहब आजकल एक डिजिटल ब्लड प्रेशर जांचने का मशीन होता है, वो हर किसी के पास मैंने देखा है, वो अपने आप से बीपी जांचने लगते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? और जो प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा उपयोग करने वाले जो बीपी मशीन होता है बीपी जांचने का, तो क्या फर्क है उन दोनों के बीच में?
0: अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का गाइडलाइन है, तो नाउडेज तो हमारा ये जो बीपी जो आप बता रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दैट इज ऑसिलेटोमेट्रिक बीपी मशीन बोलता है, जिसमें हम लोग को स्टेथोस्कोप का जरूरत नहीं पड़ता है।
1: अच्छा।
0: तो दैट इज रिकमेंडेड टूल, नहीं वो सही तरीका है, लेकिन उसको लेने का तरीका को सबको आना चाहिए। तो हम लोग तो खास करके ये भी कहा जाता है कि होम बीपी मॉनिटरिंग एंड ऑफिस बीपी मॉनिटरिंग। ऑफिस बीपी मॉनिटरिंग यानी डॉक्टर के पास गया, उनके क्लिनिक्स में आपने या ओपीडी में देखा है बीपी, और पेशेंट खुद भी मॉनिटर कर रहा है। और एक तरीका होता है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। तो बीपी मॉनिटरिंग का तीन प्रकार का तरीका होता है। तो एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग में एक मशीन रहता है जो फिजिबल नहीं, वेरी नॉट कॉमन, 24 आवर्स बीपी चेक करके पता करता है कि हाइपरटेंशन है कि नहीं, क्योंकि हाइपरटेंशन में भी दो टाइप का होता है, एक व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलता है, एक मार्क्स हाइपरटेंशन। क्योंकि हाइपरटेंशन का जो मरीज होता है वो जब डॉक्टर्स को मिलता है तभी बीपी हाई रहता है, घर में वो नॉर्मल रहता है। फिर एक होता है कि डॉक्टर्स के पास आता है वो हमेशा नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो जाके घर पे चेक करता है तो हाई रहता है, उसको बोलते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। तो ये होम बीपी मॉनिटरिंग हेल्प करता है। तो लेकिन पेशेंट को कैसे करना होता है ये बीपी मॉनिटरिंग, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वैलिडेटेड होना है, यानी कि एक अच्छा कंपनी जिसको एक हमारा जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ गाइडलाइंस होगी, हाइपरटेंशन गाइडलाइंस का जो सोसाइटी हो गया या अमेरिकन, वो वैलिडेट करता है कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अच्छा है जो बीपी मॉनिटर कर सकता है। तो देयर आर डिफरेंट कंपनीज, तो उनको वैलिडेटेड मिला होता है कि ये सर्टिफाइड किया होता है कि ये मशीन ठीक है, इस प्रकार का मशीन को हम यूज करेंगे तो सही रहता है। अब यूज करने का तरीका में क्या होता है कि घर पे भी आप जब करोगे, एक बार बीपी देखा 170 आया, दूसरा बार देखते 160 आता है, तो ये आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो उसमें क्या करता है कि उनको जो पेशेंट है उसको सुबह शाम दो दो बार बीपी देखना होता है। तो दो बार बीपी देखेंगे, सुबह भी देखेंगे, शाम के वक्त भी देखेंगे, क्योंकि डायूरियल वेरिएशन भी रहता है, क्योंकि जो कुदरत का जो है हमारा डायूरियल सुबह और शाम को भी बीपी के डिफरेंसेस रहता है। तो उनको सुबह भी मेजर करना है, शाम को भी मेजर करना है, और दो बार मेजर करना है, और दोनों बार एक एक मिनट का इंटरवल रहना है। और मेजर करते वक्त बात नहीं करना चाहिए, वो एकदम सिंपल सा चेयर में रहना चाहिए, उनका पैर नहीं झूलना चाहिए, पैर फ्लैट ग्राउंड में रहना चाहिए, उनका आर्म स्विंग नहीं करना चाहिए, आर्म एक उनका टेबल में रहना चाहिए, और जो बीपी मशीन है उनका राइट एट्रियम यानी कि हार्ट के लेवल में रहना चाहिए, जो मिड ऑफ द स्टर्नम रहेगा, छाती के बीच में उनका रहना चाहिए मशीन को। और मशीन को आप एक बार देखेंगे, एक मिनट के बाद फिर देखेंगे, फिर एवरेज लेंगे उसका, उसका एवरेज लेना होता है। फिर उसके बाद बीपी दिखने से पहले वो अपना अगर पेशाब लग रहे तो उनको ब्लैडर को पहले एम्प्टी कर लेना चाहिए। और दूसरा चीज है कि आधे घंटे पहले अगर वो स्मोकर है तो स्मोकिंग नहीं किया होना चाहिए, चाय कॉफी ऐसा कुछ भी नहीं लेना चाहिए जिससे बीपी हाई रहता है। तो आधा घंटा जैसे वो एकदम नॉर्मली रहा, एकदम रेस्ट किया, और ऐसे करके वो एवरेज एक डॉक्टर्स को मिलने जाने से पहले 7 दिन का बीपी एवरेज लेके आना है, तो पता चलता है कि होम बीपी मॉनिटरिंग में सही में बीपी हाई रहता है कि लो। तो जनरली उसका गाइडलाइन में कहता है कि 135/85 होम बीपी मॉनिटरिंग में उससे ज्यादा रहता है तो पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, ये कहा जाता है। और करेक्ट साइज ऑफ कफ, कफ यानी कि बीपी कफ जो होता है जो हम आर्म्स में बांधते हैं उसको करेक्ट साइज लेना होता है। अगर छोटा पड़ गया तो वो भी गलत बीपी ओवर रीडिंग करेंगे, और कम होगा तो कफ का 80% अगर कवर नहीं होता है तो बीपी अंडर रीडिंग हो जाएगा। तो करेक्ट साइज ऑफ कफ भी यूज करना होता है। तो अगर इसको वैलिडेटेड है, हमारा मेडिकल जर्नल्स लोग जो सोसाइटीज ऑफ हाइपरटेंशन है वो एडवाइस करता है कि होम बीपी मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इवन हॉस्पिटल में भी आजकल एडवाइस करते हैं ऑसिलोमेट्रिक बिना स्पिग्मोमीटर, जिसमें स्टेथोस्कोप का जरूरत नहीं पड़े, उसमें हम लोग यूज कर सकता है।
1: लेकिन तरीका से ही जानना,
0: करेक्ट मेथड ऑफ बीपी मॉनिटरिंग और करेक्ट डिवाइस वो करना, यूज करना।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आप जब हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में साक्षात आए हैं तो आपसे चर्चा करने के लिए तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा विषय है, लेकिन आज के ये जो कार्यक्रम है इसकी समय समाप्त होने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आज आपने अपने कीमती समय निकालकर हमारे आकाशवाणी तवांग के कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं को हाइपरटेंशन के बारे में और इसकी रोकथाम, इसकी इलाज, इसके लक्षण, इस बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: थैंक यू, शुक्रिया। श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूंगा, हाइपरटेंशन एक कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयां हैं, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस करके।

0: बीपी को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब आप पैरालाइज हो जाते हो स्ट्रोक होके, देन आप बेड रिडन हो जाते हो, तो ऐसा देखा जा रहा है हार्ट अटैक होके आ रहा है पेशेंट्स। तो ये सब चीज वी कैन प्रिवेंट इट। तो प्रिवेंशन के लिए आप समय पे हॉस्पिटल आइए, हम लोग से कंसल्ट करिए, तो हम आपको अपना एडवाइस और प्रॉपर एडवाइस देते हुए और साथ में ड्रग्स यानी कि दवाइयों को मॉडिफाई करके अकॉर्डिंगली आपको राइट ऐप जो दवाई खाना है आपको हम एडवाइस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: श्रोता, अभी आपने हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत खंडोबो जांगमो जिला अस्पताल तवांग के मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तेंजिन गेलटन से उच्च रक्तचाप पर हुए एक भेंट वार्ता सुना। उनसे भेंट करता थे सुक्षी तोजिडेमा। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:31 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ और आवाज। तो आए कार्यक्रम का पहला सांझ सुनते हैं फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से।

श्रोता, अभी आपने फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से सांस सुना। आइए अब इसी सांस को सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में।

0: के साथ मैं मीनाक्षी मजुमदार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और गलत बातें फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की और कहा कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में उपनिवेश समाप्ति पर चर्चा के दौरान कहा। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकार के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया और इस्लामाबाद के इस स्थिति पर ध्यान देने को कहा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति के अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना और इसमें शामिल विदेशी वायुसेनाओं के कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने आधुनिक लड़ाकू विमानों के शानदार हवाई प्रदर्शन को भी देखा और स्वदेशी व विदेशी लड़ाकू विमानों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। यह मल्टीनेशनल एक्सरसाइज अलग अलग देशों की वायुसेनाओं को एक साथ लाती है ताकि वे अपनी ऑपरेशनल क्षमता, एडवांस एविएशन टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन का प्रदर्शन कर सके। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है और विदेशी ताकतों के इशारों पर काम कर रही है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री नवीन ने विपक्षी पार्टियों पर देश में बेहद खतरनाक और गंभीर स्थिति पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद देश लगातार तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने पुष्टि की है कि संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां एंकरेज में कल हुए ड्रोन हमले के बाद पनामा के झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर पर सवार सभी 22 भारतीय नाविक सुरक्षित है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और भारतीय क्रू की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी जहाज प्रबंधन कंपनी के संपर्क में हैं। ये घटना खारे क्षेत्र और काला सागर में कमर्शियल जहाजों और नाविक पर हमलों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई। राज्य सरकार ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि योजना और निवेश विभाग के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ लोग सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की मंजूरी दिलाने के झूठे बहाने से विभाग के अधिकारियों के नाम पर लोगों से पैसे, कमीशन या रिश्वत मांगकर उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। विभाग ने जनता, सामुदायिक संगठनों, ठेकेदारों और लाभार्थियों से अपील की है कि वे ऐसे झांसे में न आए और अधिकारिक मंजूरी अनुकूल विचार या तेजी से काम करवाने के लिए कोई भुगतान न करे। जिस किसी व्यक्ति को ऐसी मांग की जाती है या जिसे धोखेधारी की कोशिश के बारे में जानकारी मिलती है उसे तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन या एंटी करप्शन ब्यूरो के व्हाट्सएप नंबर 9436040040 पर इसकी सूचना देनी चाहिए। अपर सियांग जिले के गेको इलाके के 4 लोगों को अरुणाचल प्रदेश के गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम 2014 के तहत हिरासत में लिया गया है। इन लोगों ने प्रस्तावित सियांग अपर सियांग मल्टीपर्पज परियोजना के लिए प्री फेसिबिलिटी रिपोर्ट स्टडीज का विरोध किया था। खबरों के मुताबिक आदुम तायुम, ओमोपोरन, आकोट पालो और आसोन पारोन का पासीघाट से हिरासत में लिया गया है। नौगांव लोकसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने AIUDF प्रमुख बी अजमल को 1,42,224 वोटों से हराया जबकि कांग्रेस उम्मीदवार शिवानी बोरा तीसरे स्थान पर रही। वोटिंग 6 अक्टूबर को हुई थी और वोटों की गिनती शुक्रवार को की गई। अरुणाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने शुक्रवार को ईटानगर के स्टेट बैंक्वेट हॉल में एक भव्य समारोह के साथ 72वें राज्य स्तरीय वन जीव सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों का समापन किया। पासीघाट वन प्रभाग को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला वन प्रभाग चुना गया और उसे वार्षिक प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani Itanagar, the news read by Morgan Bagra. India's

सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से प्रसारित रीजनल न्यूज। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमे तराने। इस कार्यक्रम में आयाज सुनते हैं लता मंगेशकर के गाए एक देशभक्ति गीत।

मश्की के चंद सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में। तो ऐशतो कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं फिल्म प्रेम पुजारी से किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत की रचयिता है नीरज और संगीत दिया है एसटी बर्मन ने। गीत की फरमाइश की है पद्मटोकी स्नापनगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगनाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और जनकपुरी शाहरानपुर से जॉन डिकास्ट्रो, पियल डिकास्ट्रो, रोजी डिकास्ट्रो और विलियम्स डिकास्ट्रो ने।

श्रोता अभी आपने देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमी तराने में लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्ति गीत सुना। ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है, समय रात्रि के 8 बज गए हैं। लीजिए श्रोता प्रस्तुत है, आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए

मशरू सुल्तानपुरी के रेचीबोल पर कार्यक्रम गाला गीत आइए सुनते हैं। फिल्म हम किसी से कम नहीं से मोहम्मद रफी की आवाज में इस गीत की फरमाइश की है मजनू का तिला दिल्ली से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और साधना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने।

आई अब सुनते हैं कार्यक्रम में आंटी फरमाइश का की फिल्म सहरा से लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को बोल दिया है हसरत जयपुरी ने और संगीत से संवारा है रामलाल ने। गीत की फरमाइश की है नालेश्वर नगर महाराष्ट्र से पीएस नवकर, निर्मला नवकर, विशाल नवकर और मलकापुर से नारायण इंगल, सुपन तायरे और आशीष मुरेखर ने।

श्रोताओं, अभी आप आने लगे थे कार्यक्रम पुरानी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के वास्ते परामर्श पर आधारित कुछ बेहद सदाबहार प्यारे नगमे। अगर आप इस तरह की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033-914-908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमें जरूर सब तक पहुँच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइश पर आधारित हमारे रोमानी और यादगारा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी की यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील, रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 8:00। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया के बरहम में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। ISSF निशानेबाजी राइफल और पिस्टल विश्व कप आज से मिस्र के काहिरा में शुरू हुआ। वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में 6 विकेट से हराया। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का 92वां सीजन कल से शुरू होगा। कुल 38 टीमें ट्रॉफी के लिए करेंगी मुकाबला और फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण वाराणसी

0: आज कार्यक्रम को शुरू किया जाए बाउल के मैदान से आई हुई एक खुशखबरी के साथ, जहां भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया के बरहम में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। असम के 23 वर्षीय पुतुल ने पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में दुनिया के तीसरे नंबर के स्कॉटिश खिलाड़ी इयान मैकलिन के हाथों सीधे सेटों में 5-8, 4-8 से हार के बाद कांस्य पदक से समझौता किया। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर के हरिमैन जुवैन को 4-4, 6-5 से पराजित किया था। वे इसके पिछले सीजन में क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए थे। तो अपने तरीके का एक बेहद रोचक खेल, जहां पर कुछ बड़ी आकार की गेंदों के साथ हम निशाने साधते हैं मैदान की तरफ, तो वहां से भारत के लिए पदार्पण हुआ है इस ट्रॉफी में पदकों का। और अब बात निशानेबाजी की, जहां ISSF निशानेबाजी राइफल और पिस्टल विश्व कप आज से मिस्र के काहिरा में शुरू हो गया है। इस दौरान कई भारतीय निशानेबाज पदकों के लिए निशाने साधते नजर आएंगे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: निशानेबाजी की दुनिया में एक बार फिर रोमांच और प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार है। प्रतियोगिता में 51 देशों के लगभग 385 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय टीम में कुल 35 निशानेबाज शामिल हैं। इनमें पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह के साथ एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पलक गुलिया जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। भारत के युवा निशानेबाज जोनाथन गेविन एंथनी पर भी निगाहें रहेंगी, जो जूनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद सीनियर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रतियोगिता में राइफल और पिस्टल की व्यक्तिगत तथा मिक्स्ड टीम स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये प्रतियोगिता अपनी लय और प्रदर्शन को परखने के साथ साथ साल के अंत में होने वाले ISSF विश्व कप फाइनल के लिए जगह बनाने का भी अहम अवसर है। 10 अक्टूबर को 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल की मिश्रित टीम स्पर्धाओं के साथ पदक मुकाबलों की शुरुआत होगी। मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल में पलक गुलिया, मुस्कान उदयवीर सिद्धू और अजेंद्र सिंह चौहान भारतीय चुनौती पेश करेंगे। वहीं एयर राइफल मिक्स्ड टीम में आर्या बोर से ख्याति चौधरी, श्रीकांत धनुष और पार्थ मखीजा हिस्सा लेंगे। काहिरा विश्व कप में भारतीय दल के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने और पदक तालिका में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की चुनौती होगी। अब देखना होगा कि भारतीय निशानेबाज अपने सटीक निशाने और शानदार प्रदर्शन से देश के लिए कितने पदक जीत पाते हैं। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो अब भारतीय खिलाड़ियों पे नजरें होंगी कि किस तरह से पदक जीते जाएं और जो फाइनल ISSF विश्व कप होता है उसके लिए अपने स्पॉट को फिक्स किया जाए। और इस पूरे टूर्नामेंट पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, ये तो हमने जान लिया कि कौन कौन खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, तो कब कब दर्शकों को इनके मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं?
2: जी शक्ति, कल से ही कई मुकाबले खेले जाएंगे, आज भी कुछ मुकाबले खेले गए। अगर हम 11 अक्टूबर कल की बात करें तो पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजोत सिंह और जोनाथन गेविन एंथनी सहित कई निशानेबाज निशाना साधते नजर आएंगे। वहीं अगर हम 12 अक्टूबर को देखें तो अर्जुन बाबूता, श्रीकांत धनुष और पार्थ मखीजा इसी स्पर्धा में मुकाबला करेंगे। और इसी दिन 12 अक्टूबर को ही महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान, दिव्या थडिगोल, सुबराजू और चिंकी यादव से भारतीय दल को काफी उम्मीदें रहेंगी। और अगर आगे बढ़े 14 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पलक गुलिया और रिदम सांगवान सहित भारतीय निशानेबाज प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे उस दिन भी शक्ति। और इसी दिन अगर हम 14 ही अक्टूबर की बात करें तो पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में विजयवीर सिद्धू और उदयवीर सिद्धू जैसे खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। और यही नहीं शक्ति, 15 अक्टूबर को भी कई मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले और अखिल शोरान पर खास नजरें होंगी। वहीं इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में अंजुम मैदगिल और मानिनी कौशिक हिस्सा लेंगी। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में आर्या बोरसे और स्मिता भोवाल सहित भारतीय निशानेबाज मैदान में उतरेंगे। तो ये काफी अहम टूर्नामेंट भी है, इस साल के अंत में वर्ल्ड कप भी होना है, तो उसके लिए इन खिलाड़ियों के पास अहम मौका होगा कि अपनी चुनौती पेश करें आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। और शक्ति, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अभी जो हाल ही में एशियन गेम्स हुआ है

0: में भारतीय निशानेबाजों का मिला जुला प्रदर्शन रहा। एक तरफ जहां नीरू ढांडा ने जो एक नई प्रतिभा के तौर पर निकल के आई, उनको फ्लैग बेयरर भी रही थी, उन्होंने कई पदक देश को दिलाए, लेकिन मनु भाकर जैसे खिलाड़ी जिनसे कई पदक की उम्मीद थी वो चूक गई। तो इन खिलाड़ियों के पास भी मौका है कि आगे चल के देश का प्रतिनिधित्व करें।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि कई नए खिलाड़ियों को सीखने का मौका मिलेगा कुछ वरिष्ठ और बड़े खिलाड़ियों के बीच में, और किस तरह से अपना स्टेज सेट करते हैं आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, ये देखने वाली बात होगी। निशानेबाजी के बाद अब कार्यक्रम में रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का। वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। फिलहाल रांची के JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत से मिले 250 रन के लक्ष्य को मेहमान टीम ने 9 गेंद शेष रहते 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज के लिए मैच के हीरो कप्तान शाई होप रहे, जिन्होंने 45 गेंद में 102 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली।
2: श्रेयस अय्यर की मैंस इन ब्लू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 249 रन बनाए। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने 41 गेंदों पर 82 रन की शानदार पारी खेली। सैमसन के अलावा तिलक वर्मा ने 18 गेंद पर नाबाद 44, लोकल बॉय ईशान किशन ने 22 गेंद में 43 और कप्तान अय्यर ने 18 गेंद पर 40 रन की पारी खेली। मेहमान टीम के लिए रोस्टन चेज ने 3 और शमर स्प्रिंगर ने 2 विकेट लिए। 250 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम पहले ही ओवर में 2 विकेट गंवा बैठी। हालांकि इसके बाद कप्तान शाई होप ने एक छोर से तेज रफ्तार से रन बनाना शुरू किया और पहले रोमिन पॉवले के साथ 53 तथा शेरफेन रदरफोर्ड के साथ 120 रन की तेज साझेदारी करते हुए टीम को इस हाई स्कोरिंग मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। 178 रन पर 4th विकेट गिरने के बाद कप्तान ने रोमारियो शेफर्ड के साथ 13 गेंदों पर 34 रन जोड़ते हुए मैच अपने नाम करके टीम को श्रृंखला में बराबरी पर ला दिया। भारत की ओर से मयंक ने 3 और कुलदीप यादव ने 1 विकेट हासिल किया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब दोनों टीमों के बीच श्रृंखला का तीसरा मुकाबला शाम 7 बजे से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: प्रशांत, T20 का जो सबसे सफल रनचेज है 259 रन का दक्षिण अफ्रीका ने इसी वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ किया था, लेकिन कल का मुकाबला अगर देखा जाए जिस तरह भारतीय गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा, यदि भारत वो 260 के आंकड़े को पार भी करती तो जीतना मुश्किल था, सबसे बड़ा रनचेज भी देखने को मिल सकता था। और ये लगातार एक दिवसीय श्रृंखला में भी हुआ और यहाँ पे भी वो सिलसिला जारी है कि कहीं ना कहीं गेंदबाजी हमें जिताया हुआ मैच में पीछे कर दे रही है।
0: बिल्कुल शक्ति, अगर कल के मुकाबले की भी बात की जाए तो 9 गेंद शेष रहते ही वेस्टइंडीज ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया और T20 में 250 रन का लक्ष्य बहुत बड़ा होता। अमूमन हम देखा करते थे कि ODIs में भी 250 रन विनिंग टोटल माना जाता था, लेकिन T20 में 250 रन अपने ही घरेलू मैदान पर डिफेंड ना कर पाना यह दर्शाता है कहीं ना कहीं गेंदबाजी में लूप होल। अगर कल के मुकाबले की भी बात की जाए तो जो मयंक यादव, उन्होंने 3 ओवर में 36 रन दिए जो 12 के इकोनॉमी रेट से। अगर अर्शदीप सिंह जो 100 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, भारत के मेन पेसर्स में गिने जाते हैं, उन्होंने भी 4 ओवर में 45 रन दिए और एक भी विकेट उनके हाथ नहीं लगा था। और अक्षर पटेल जो अभी इंडिया के प्रोमिनेंट ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा के बाद, उन्होंने भी महज 3.3 गेंद पर 63 रन दिया था। और शक्ति, यही नहीं, अगर हम एशियन गेम्स की भी बात करें जो फाइनल मुकाबला खेला गया था पाकिस्तान से, तो जब जब टीम परेशानी में नजर आ रही थी तब तब जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज जो एकमात्र हमारे पास है वो भारत को वापसी करा रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला है, जब से श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिली है तब से भारत की जो गेंदबाजी है और वो गेंदबाजी क्रम है वो लगातार धराशायी हो रही है। कल के मुकाबले में भी कुलदीप यादव हो या शिवम दुबे हो, नबंधीर हो, सबने कहीं ना कहीं 12 प्लस की इकोनॉमी रेट से प्रदर्शन किया है।
1: जी बिल्कुल, आपने बुमराह का जिक्र किया, बुमराह ने भारत की साख बचाई किस तरह से, तो क्या ये माना जाए कि क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स आपके सामने खड़े हैं तो भारत को वाकई वापस कहीं ना कहीं अब अपने उन पुराने खिलाड़ियों की जो शायद थोड़े से कह सकते हैं कि पेस बॉलिंग अटैक के अकॉर्डिंग उम्र दराज है, उनका रुख करने का समय आ रहा है, या फिर एक कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश होगी जहां पे एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स के बीच में संतुलन साधा जाए?
0: जी कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार का सिलेक्शन ये दर्शाता है कि भारतीय टीम ने बहुत ट्राई किया यंग गेंदबाजों को, लेकिन उनसे वो आउटकम नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण वो अनुभव के पास जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मौका होगा मोहम्मद शमी के लिए, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने भुवनेश्वर कुमार को सेलेक्ट किया है T20 में, ये दर्शाता है कि एक दिवसीय क्रिकेट में भी उन्हें चुनने की बात रखी जा रही है और मोहम्मद शमी के लिए भी

0: अच्छा मौका होगा टीम में वापसी करने का।
1: जी बिल्कुल, और इसी क्रम में कई और खिलाड़ियों को भी अपना जलवा बिखेरने का मौका मिलेगा। कल से जहां रणजी ट्रॉफी का 92वां सीजन शुरू होने जा रहा है, देश के इस सबसे बड़े घरेलू रेड बॉल टूर्नामेंट में कुल 38 टीमें नजर आएंगी। पहले राउंड में कुछ बड़े भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिखेंगे जो बाद में न्यूजीलैंड के रेड बॉल दौरे के लिए इंडिया ए टीम में भी शामिल होंगे। प्रशांत
0: जी बिल्कुल, और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर जो डिफेंडिंग चैंपियन है अपने खिताब को बचा पाती है कि नहीं, क्योंकि इसका रिवॉर्ड भी मिलता है। शक्ति, हम आकिब नबी की बात करें तो अभी टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो जम्मू कश्मीर ऐसे जगह से बहुत कम खिलाड़ी निकल के आते हैं जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें से एक आकिब नबी थे। और अगर हम इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया से हारने के बाद पारस डोगरा की कप्तानी वाली टीम श्रीनगर में मध्य प्रदेश के खिलाफ वापसी करने की कोशिश करेगी, और कहीं कहीं प्रोमिनेंट प्लेयर भी हैं जो इस सीजन में खेलते नजर आएंगे। अगर हम कर्नाटक की बात करें शक्ति, तो वहां से केएल राहुल जो टीम का हिस्सा, अभी शतक भी लगाया था उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में। यशस्वी जायसवाल जो है प्रोमिनेंट ओपनर है भारत के, रविंद्र जडेजा सौराष्ट्र के लिए, हैदराबाद के लिए मोहम्मद सिराज, राजस्थान के लिए मानव सुथार जो अब इंडिया के लिए भी खेलते टेस्ट मैचेस में, तमिलनाडु के लिए वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार और आकाशदीप जैसे खिलाड़ी जो बंगाल का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे इस टूर्नामेंट में।
1: जी बिल्कुल, और जब आपकी टीम में, आपके प्लेइंग 11 में, आपके स्क्वाड में इस तरह के बड़े खिलाड़ी जुड़ते हैं तो ना सिर्फ टीम को मजबूती मिलती है बल्कि जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको भी देख के काफी कुछ नया जानने को सीखने को मिलता है कि आप जब एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। कुछ खिलाड़ियों के लिए रणजी ट्रॉफी नेशनल टीम में वापसी का दावा पेश करने का भी एक बड़ा मौका होगी, जैसे कि मुंबई के सरफराज खान और कर्नाटक के करुण नायर। मुंबई के आयुष मात्रे भी चाहेंगे कि इसी ट्रॉफी के जरिए भारतीय टीम के दरवाजे पर दस्तक दी जाए। पिछले सीजन में 37 विकेट हासिल करने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी मैदान पर वापसी कर रहे हैं, बंगाल की टीम का हिस्सा है, तो आपने जैसा कहा भी एक अच्छा मौका है उनके लिए भी।
0: जी बिल्कुल, और 4 सदस्यीय चयन समिति की नजरें विदर्भ के हर्ष दुबे जिन्होंने आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, प्रफुल्ल हिंगे, यश राठौर और उत्तर प्रदेश के लेग स्पिनर जिशान अंसारी पर भी होगी, उमेश यादव जो पंजाब के लिए खेलते हैं, हर्षल पटेल लगातार वो आईपीएल में आरसीबी के लिए और अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, मनदीप सिंह, हनुमा विहारी जैसे अनुभवी खिलाड़ी अहम मेंटोर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। शक्ति,
1: प्रशांत जल्दी जल्दी में हमें यह भी बता दीजिए कि इस बार ग्रुप का संतुलन और आंकड़े क्या कह रहे हैं।
0: ग्रुप ए की अगर बात करें शक्ति, तो उसमें बिहार, बड़ौदा, गोवा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश और विदर्भ को शामिल किया गया है। ग्रुप बी में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, त्रिपुरा, पंजाब और असम की टीमें शामिल हैं। वहीं ग्रुप सी में बंगाल, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र सर्विसेज और उड़ीसा को शामिल किया गया। वहीं ग्रुप डी में मुंबई, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और रेलवे जैसी टीमें खेलती नजर आएंगी। शक्ति
1: जी, और श्रोताओं को हम ये भी बता दें कि एक प्लेट ग्रुप भी होता है जो कि हमारी जो एलाइट टीमें होती हैं उनकी बजाय ये 6 टीमें जो नई होती हैं, फिर इनका परफॉर्मेंस पिछले सीजन में थोड़ा सा कमतर रहता है, उनको शामिल किया जाता है। तो प्लेट ग्रुप में मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की टीमें होंगी। और अब कार्यक्रम में अंत में रुक कर लेते हैं फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का, जिसका 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां पर नशा मुक्त युवा विकसित भारत विषय पर केंद्रित होकर के लोग साइकिल चलाएंगे और देंगे फिटनेस का संदेश। और इसी संदेश के साथ श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक

0: ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
3: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मित मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मित पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न

0: छुपने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पर आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
3: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
4: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
3: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
5: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
3: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात

0: CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
1: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।